0: Non-stop de allerbeste hits op Radio SBS.
1: फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना.

0: Dit is Radio SBS.
1: क्या हुआ?
2: वो तो
1: क्यूट है ना?
2: अरे पहलवान है,
1: पर तुमसे प्यार करती है।
2: हो नहीं सकता।
1: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
2: हो नहीं सकता।
1: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
2: ये हो नहीं सकता।
3: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरी श्याम।

इंसाफ का मंदिर है, ये भगवान का घर है, हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अरसों। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। ये लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनवलवाज बीफे बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन है, 15 अक्टूबर का प्रोग्राम आप सभी सुनवालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनवालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी को 5वां नवरात्रि का दिन सभी को बधाइया ही बधाइया बस पेश किया जा रहा है। एक शुभ नवरात्रि आप हर एक भक्त प्राणियों को बस पेश किया जा रहा है। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है रेडियो SBS का 03-265-65-60। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर 03-262-66-11। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl। उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी और खास तौर पर हॉलैंडीज के बीच में मिड नीदरलैंड और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में DAB प्लस रेडियो के जरिए अपना मोटर कार में अपना घरों में ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। रेडियो SBS का वेबसाइट के जरिए भी आप मेल कर सकते हैं और रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरिहरन के आवास में सुबह सुबह लो शिव का नाम, पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS की सर ये पेश की गई सुबह सुबह लो सियु का नाम हरिहरन के आवास में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। हमारी सभी सुनने वालों को स्वागत किया जा रहा है। आज बीफे बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन 15 तारीख अक्टूबर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज नवरात्रि का पांचवा दिन है, स्कंद माता जी का दिन है, तो सभी को एक शुभ नवरात्रि बस पेश किया जा रहा है। चले नवरात्रि का पांचवा दिन के मौके पर एक सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। जिस तरह से मैंने आपको खबर किया पांचवा दिन है, स्कंद माता जी का दिन है, तो चले सुंदर सा भजन शुभ नवरात्रि के साथ आप सभी भक्त प्राणियों सभी सुनने वालों के लिए बस पेश किया जा रहा है।

सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए नवरात्रि के खास उपलक्ष्य पर आप सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए। भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का ऐप नंबर 03-262-66-11 है। सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है सभी को शुभ सुबह शुभ दिन अनहेल खुद मोर्ख गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। कुमार विशु की आवाज में नवरात्रि के खास उपलक्ष्य पर ये सुंदर भजन

सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए शिव जी का भजन अभी आपने सुना। खास तौर पर अनुराधा पोटवाल जी के आवास में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में ये सुंदर सा भजन बस पेश की गए है। नवरात्रि का दिन है, आज नवरात्रि का पांचवा दिन है और चले प्रोग्राम में आपकी बार ये खास सुंदर भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए। तो भजन यात्रा प्रोग्राम में आपकी बार ये सुंदर सा भजन पेश किया जा रहा है, हम आपको ले चलते हैं नरेंद्र चंचल की आवाज में सुंदर सा भजन जो पेश किया जा रहा है।

चंचल की आवाज पे सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई नवरात्रि के खास उपलक्ष पर। चले प्रोग्राम में सुंदर सा चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। आज माता का दिन है, पांचवा दिन है नवरात्रि का, तो सुंदर सा चालीसा बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए। चले मिलकर सुनते हैं।

सुंदर सा चली सा बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से भी आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन। और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए, उनके पूरा परिवार के लिए, और खासतौर पर सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, उनके लिए भी, उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन और एक शुभ नवरात्रि के साथ ये सुंदर सा भजन, आरती भजन पेश किया जा रहा है। पांचवा दिन है नवरात्रि का, स्कंद माता जी की आरती बस पेश किया जा रहा है।

ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए, हर पल चाहे मेरा दिल तुमको ही देखा करूं। बीफे बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन 15 तारीख अक्टूबर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। 8:00 प्रोग्राम में 11 मिनट वाइटेड हो चुका है। उदित नारायण और अलका जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है, फिल्म का नाम एक रिश्ता है।

उदित नारायण और अलका जी की आवाज में खूबसूरत गाना, काफी प्यार भरी गाना आज के ये प्रोग्राम में पेश की गई, मोहब्बत ने मोहब्बत को पुकारा है, फ्रॉम द मूवी एक रिश्ता, फिल्म जो 2001 में रिलीज किया गया है, फिल्म एक रिश्ता। उदित नारायण और अलका जी की आवाज में गाना भी आपने सुना। चले प्रोग्राम में अभिजीत की ओर, सुबह की प्रोग्राम है, खूबसूरत नगमे आप हर एक के लिए बस पेश किया जा रहा है। तेरा कुछ सुनने वालों नौकरी पर है, काम पर है, प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं डे या बे रेडियो के जरिए और अपना मोबाइल टेलीफोन के जरिए, और कुछ सुनने वालों घर पर है डे या बे प्लस रेडियो के जरिए, इंटरनेट रेडियो के जरिए या तो अपना मोबाइल टेलीफोन मोबाइल फोन के जरिए हमारा प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। अभिजीत फ्रॉम द मूवी बेवफा, और ये फिल्म 2004 में रिलीज किया गया है। बेवफा फिल्म का नाम

0: छुपा।
1: अभिजीत की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आंसरों भी थे कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, वेबसाइट होता है रेडियो SBS इंटरनेट। उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं अच्छी साउंड में अच्छी आवाज में। और उसी वेबसाइट के जरिए भी आप मेल कर सकते हैं और रेडियो SBS का ऐप पर भी ऐप कर सकते हैं। गाना जो अब की बार पेश होगा शान एन श्रेया जी की आवाज़।

में ये गाना बजपी इसकी गई फिल्म का नाम था प्रेम अगन। सुनने वालों अभी तकरीबन 9 बजे से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जाएगी, तो जरूर सुनते ही रहना। सोनू निगम एंड अनुराधा पोटवाल प्रोग्राम में

uit de film Pukar. अनुराधा पोडवाल एंड सोनू निगम के आवाज में ये गाना पेश की गए आज की प्रोग्राम में 12 मिनटों ओवर हाफ नेग यानी कि 12 मिनट व्यतीत हो चुका है सुबह साढ़े 8:00 कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति प्यार में या कहिए प्यार इश्क और मोहब्बत फिल्म का नाम कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति

बजकर प्रोग्राम में 3 मिनट व्यतीत हो चुका है। SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। सभी सुनने वालों को वेलकम और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। हम देख रहे हैं बहुत से सुनने वालों हैं जो इस वक्त रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं। सभी पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम इंतजार में है। गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ ये प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। तो चले आप सभी के लिए गर्मा गर्म कॉफी चाय गुड मॉर्निंग के साथ गुड मोर्ख के साथ बस पेश किया जा रहा है। चले आज की प्रोग्राम का पहला गाना की ओर। मुबारक बेगम और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म का नाम हमरा।

ये फिल्म का गाना बस पीस की गई मुबारक बेगम और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे, फिल्म का नाम संगम, उसी फिल्म का ये गीत अब की बार आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। दमाईटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, फिल्म संगम।

फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर 03-262-6611 है। इसी तार की नंबर पर स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। स्टूडियो की ओर आप रेडियो SBS का ऐप पर ऐप कर सकते हैं और ऐप द्वारा भी आप स्टूडियो की ओर तार कर सकते हैं। मोहम्मद रफी एंड लता जी की आवाज में ये गाना, जंगली फिल्म का नाम, उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है। 1961 का फिल्म, 1963 का फिल्म, मोहम्मद रफी एंड लता मंगेशकर।

जंगली फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए बस पेश की गई है। मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। चले प्रोग्राम में एक बार फिर से लता

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो में देखिए गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गए टेम्स ड्राइव 237 शहर उत्तराखंड से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए प्रोग्राम में गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। फिर से प्रोग्राम में होगा लता मंगेशकर और उत्तराखंड शहर की रहने वाली श्रीमती महदा नुंदा। श्रीमती महदा नुंदा लता जी की आवाज में गाना सुनना चाहते हैं तो चले फिल्म अनारी का गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं। सॉन्ग आए लता मंगेशकर उत्तराखंड शहर की रहने वाली श्रीमती महदा नुंदा खास गाना जो लता जी की आवाज में सुनना चाहते हैं तो इसी तरह से ये गाना पेश किया जा रहा है।

अनारी फिल्म का गीत पेश की गई लता मंगेशकर की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना और गाना लता जी की आवाज में सुनना चाहते थे, खासतौर पर उत्तराखंड शहर के रहने वाली श्रीमती मखदा नुंदा। श्रीमती मखदा नुंदा ये खास गाना आज के प्रोग्राम में सुनना चाहते थे लता जी की आवाज में। इसी तरह से बस पेश की गई, शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। अब की बार एक गाना पेश होगा फिल्म परिवार 1967 का फिल्म है। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर जी की आवाज में गाना आप सुनेंगे, हमने जो देखे सपने। सुतमेर शहर की रहने वाली नलिनी, नलिनी ये गाना मांग किया है आज के प्रोग्राम में, हमने जो देखे सपने, फ्रॉम द मूवी परिवार, महेंद्र कपूर एंड लता मंगेशकर। एक बड़ी ही खूबसूरत गाना, सुतमेर शहर की रहने वाली नलिनी ने मांग किया है। तो चले नलिनी की मांगी हुई गाना मिलकर सुनते हैं और साथ में बैकग्राउंड पर गुनगुनाते हैं।

0: Op de A16 Breda-Rotterdam is het druk. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander betekent dat 10 minuten extra reistijd. Op de A58 Breda richting Eindhoven sta je 20 minuten in de file bij Oorschot. De A59 knooppunt Zonshiel richting Den Bosch. 10 minuten extra reistijd tussen Waalwijk Centrum en Vlijmen. En dan de nasleep van een ongeluk op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Het ongeluk gebeurde op de A9 en dat merk je dus op de aansluiting met de A9. 3 kilometer met 20 minuten vertraging.
1: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.
2: सर हे नौ बजकर प्रोग्राम में 4:22 हो चुका है। काफी सुनने वालों हमारा प्रोग्राम इस वक्त फॉलो कर रहे हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम हजारों सुनने वालों बस सुनते हैं, न सिर्फ हॉलैंड देश के अंदर में लेकिन हॉलैंड देश के बाहर देश विदेश में भी। रोटरडम शहर के अंदर में भाई रशीद पीरू भी हमारा प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं, शुक्रिया भाई, और शुभ दिन आपको भी पेश किया जा रहा है। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना, ऐप द्वारा भी अभी खबर किया है और खबर भी किया है कि प्रोग्राम से मजा ही मजा लेते हैं। देनहाग शहर की रहने वाली कमला भी हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं और आज के प्रोग्राम में तलत जी की आवाज में एक खास गाना मांग किया है, तस्वीर बनाता हूं तस्वीर नहीं बनती। देनहाग शहर की रहने वाली कमला की मांगी हुई गाना

तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती। तलत जी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में और गाना को मांग करने वाली थी देनहाग शहर की रहने वाली कमला। कमला की मांगी हुई गाना आज की प्रोग्राम में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। रोटरडम शहर की रहने वाली, रोटरडम शहर की रहने वाली सबीना छोटे खान सोमवन स्पेशल के लिए, हाँ सोमवन स्पेशल के लिए एक गाना मांग किया है आज के प्रोग्राम में आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम तीसरी मंजिल।

ओ मेरे सोना रे सोना, आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई। तीसरी मंजिल फिल्म का गीत अभी आपने सुना और गाना को मांग करने वाली थे रोटरडम शहर की रहने वाली सबीना छोटे खान, अपने प्यारा प्यारा सोमो स्पेशल के लिए ये गाना मांग किया जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। शुक्रिया, शुभ दिन पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए शुक्रिया कहा जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। 030-22-66-66-11 स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है। कोई भी गाना इस पुरानी फिल्म संगीतों का प्रोग्राम में सुनना है तो जरूर आप स्टूडियो की ओर तार कीजिए, ऐप कीजिए या तो ऐप द्वारा तार कीजिए। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम बहुत से सुनने वालों है जो रोजाना और रोजाना सुनते हैं। एक हिट प्रोग्राम होता है जो रेडियो SBS के जरिए संगीत भरी स्टेशन के जरिए बस पेश किया जा रहा है। हमारा प्रोग्राम हमेशा फॉलो कर रहे हैं, हमेशा कहते हैं एक फॉलो किया, हाँ हमें फॉलो कर रहे हैं। रोटरडम शहर की रहने वाली शीला, और शीला एक गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया है लता जी की आवाज में। एंड फिल्म साथी, मेरे जीवन साथी गीत का बोल है। रोटरडम शहर की रहने वाली शीला की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म साथी का गीत आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। रोटरडम शहर की रहने वाली शीला की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आसरो मीठे गाना सुनकर और काफी पसंद किया है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और अभी अभी खबर किया है कि घर पर नहीं है लेकिन हमारा प्रोग्राम बाहर भी फॉलो करते रहते हैं। कहा ना एक फॉलो है तो बाहर भी मुझको फॉलो करते रहते हैं। रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं। शीला शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम सुनते ही रहना। अब की बार हम आपको ले चलेंगे इंडिया भारत देश नोएडा की ओर। इंडिया भारत देश नोएडा से अनुरेश एक खास गाना मांग किया है। फिल्म का नाम चा चा चा मोहम्मद रफी की आवाज में। तो चले मिलकर गाना को सुनते हैं। फिल्म चा चा चा सॉन्ग बाय मोहम्मद रफी। इंडिया भारत देश नोएडा से खास तौर पर अनुरेश गाना को मांग किया है आज की प्रोग्राम में। एक बड़ी ही खूबसूरत गाना काफी दिनों के बाद आपकी सेवा में बस पेश किया जा रहा है।

में श्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म चा चा चा उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना, सुबह न आए। इंडिया भारत देश नोएडा से खासतौर पर अरुणेश ये गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया आप सभी और सभी सुनने वालों के लिए। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो एसबीएस

गीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनवालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। उत्तरेख लेन गिरधारी स्त्रात से खासतौर पर राजन गिरधारी भी हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं और एक गाना मुकेश जी की आवाज में मांग किया है। मदन मोहन का संगीत पर गाना पेश होगा दुनिया ना माने, उसी फिल्म का ये गीत पेश किया जा रहा है माइटी मुकेश की आवाज में। राजन गिरधारी उत्तरेख लेन गिरधारी स्त्रात का रहने वाला है और गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया है हमने।

दस बजकर प्रोग्राम में 6 मिनट वाइडेड हो चुका है। सेस मनुटन ओवर 3 और रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हर एक को खबर कीजिए। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आपकी सेवा में बस पेश किया जा रहा है और ये प्रोग्राम रोजाना सुबह 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। फरमाई से हुआ इश्तेहारे जरूरी खबरें जो भी कामकाज आपको पेश करवाना है सस्ती दामों में सभी कामकाज किया जा रहा है। आपकी फरमाई से 5 यूरो पर फरमाइश। तमाम रिक्लाम तमाम खबरें जो आपको पेश करवाना है सस्ती दामों में रेडियो SBS के जरिए बस पेश किया जा रहा है। एक गाना बस प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में पेश होगा और दीमन शहर के अंदर में हमेशा और रोजाना हमारा प्रोग्राम मनोज भी सुनते हैं। कभी जहां पर नौकरी कर रहे हैं वहां पर प्रोग्राम सुनते हैं, कभी घर पर। तो आज की प्रोग्राम में मनोज एक गाना मांग किया है, फिल्म का नाम अपनापन, मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में। आदमी मुसाफिर है, आता है और चले जाता है।

अपनापन फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में दीमन शहर का रहने वाला मनोज का खास गाना मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। रोथडम शहर का रहने वाला हारोल्ड आज के प्रोग्राम में स्टूडियो की ओर तार किया है, कुछ बातें हुए हैं, एक गाना सुनना चाहते हैं किशोर और आशा जी की आवाज में।

0: मचल रहा है,
1: अभी समा नहीं है,
0: रंग बदल रहा है,
2: गाना जो पेश की गई आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। और इसी तरह से गाना रोटरडम शहर का रहने वाला हारोल्ड ने मांग किया आज की प्रोग्राम में, ये गाना जो पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे और हमारा प्रोग्राम हमेशा की तरह आज भी इंग्लैंड में नैला भी सुनते हैं और नैला एक गाना मांग किया है आज की प्रोग्राम में और वो भी लता जी की आवाज में। चले मिलकर गाना को सुनते हैं फिल्म का।

गाना लता जी की आवाज में पेश की गई आखिरी खत फिल्म का नाम था एंगलांत देश से, खासतौर पर नैला। नैला ये गाना आज के ये प्रोग्राम में मांग किया आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का ये प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। एक गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे मोहम्मद रफी की आवाज में जो पेश किया जा रहा है। नीवखैन शहर का रहने वाला हैंक ये खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया है जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

10:30 प्रोग्राम में 2 मिनट व्यतीत हो चुका है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। बाहर का मौसम की देखा जाए खूबसूरत सुहाना मौसम है, धूप ही धूप निकला हुआ है और रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। संगीत भरी स्टेशन का प्रोग्राम, पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। अभी अभी सोनिया तार किया है फोर्ट बेरक शहर से, हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं और एक गाना सुनना चाहते हैं माइटी मुकेश की आवाज में। तो चले सोनिया की मांगी हुई गाना मिलकर सुनते हैं।

मैटी मुकेश की आवाज में गाना बस पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। फोर बेड़ख शहर के रहने वाली सोया सोया की मांगे हुए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सोया शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। बस हमें मालूम है कि हमेशा आप रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, इसके लिए शुक्रिया धन्यवाद। और प्रोग्राम इसी तरह से बस सुनते ही रहना। 7:30 स्टूडियो टाइट हो चुका है। देन हाँ शहर की रहने वाली देनहाग शहर की रहने वाली सिंथिया सुक्को अपनी बार एक गाना मांग किया है। फिल्म का नाम साथी दमाइटी मुकेश की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

माइटी मुकेश की आवाज में फिल्म साथी का गीत पेश की गए। 1968 का फिल्म, 1968 का फिल्म जिसमें द लेट राजेंद्र कुमार और खासतौर पर विजयंती माला ने काम किया है। फिल्म साथी का गीत पेश की गए और ये खूबसूरत गाना मुकेश जी की आवाज में मांग करने वाली थी डेनहाग शहर की रहने वाली सिंथिया सुक्खू की ये मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में सिंथिया आपको शुभ दिन।

सुनने वालों, इन दिनों नवरात्रि है। आज नवरात्रि का पांचवा दिन है। आप सभी को बस एक शुभ नवरात्रि भी पेश किया जा रहा है। रुद्राक्ष शहर से मीला मीला भी तार किया है, कुछ बातें हुए हैं और एक गाना आज की प्रोग्राम में लता जी की आवाज में मांग किया है। सौदागर फिल्म का नाम, लता जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना। उत्तराखंड शहर की रहने वाली

सौदागर फिल्म का गीत पेश की गई लता जी की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई। यूत्रेख्त शहर की रहने वाली मीला ये गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। अभी अभी मैंने देखा बहुत सी सुनने वालों, हजारों हजारों सुनने वालों दुनिया की कोने कोने में बस प्रोग्राम को सुनते हैं। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम जो है बहुत सी सुनने वालों बस हमेशा और हमेशा फॉलो कर रहे हैं। गाना जो अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जाएगी आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम में,

जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। देनहाग शहर की रहने वाली मालती, मालती आज के प्रोग्राम में भी एक बड़ी ही खूबसूरत गाना मांग किया है फिल्म दीवार, किशोर कुमार एनाशा जी की आवाज में।

गाना फिल्म दीवार से बस पेश की गई किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में देनहाग शहर की रहने वाली मालती ये गाना आज के ये प्रोग्राम में मांग किया आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

शुक्रिया, धन्यवाद कि आप सभी ने हमारा साथ दिया है। प्रोग्राम को जो टूट से भी सुनते हैं, सभी को शुभ दिन भी पेश किया जा रहा है। मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में गाना पेश होगा और गाना को मांग करने वाली है हमेशा जो रेडियो SBS का प्रोग्राम को फॉलो करते हैं, आम्स्टरडम साइटोस में खासतौर पर श्रीमती बेया हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं और आज की प्रोग्राम में ये गाना सुनना चाहते हैं। दिल ने फिर याद किया फिल्म का नाम, मोहम्मद रफी और आशा। आखिरी पुरानी फिल्म का गीत और आखिरी सुनने वालों की मांगी हुई गाना बस पेश किया जा रहा है।

0: मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में गाना पेश की गई दिल दे फिर याद किया, उसी फिल्म का ये खूबसूरत प्यार भरी गाना पेश की गई आमस्टरडम सोइटोस की रहने वाली श्रीमती बेया। ये गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। यहाँ तक पुरानी फिल्म ये संगीतों का प्रोग्राम पेश की गई। मत भूलना कल शुक्रवार है, कल सुबह 9 बजे से फिर आपकी सेवा में ये प्रोग्राम पेश किया जाएगी। 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक हमेशा स्टैंड बाय रहना। आप हर के लिए उन दिनों की यादें आपके लिए पेश किया जा रहा है पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में, और वो भी हमेशा सुनने वालों गर्मा गर्म कॉफी चाय लेकर के इस प्रोग्राम को सुनते हैं। घर पर हो या नौकरी पर हो, काम पर हो, दुनिया की हर एक कोने कोने में सुनने वालों ये प्रोग्राम को सुनते हैं। सबसे पहले सभी सुनने वालों जो प्रोग्राम में हिस्सा लिया, शुक्रिया, धन्यवाद। जब भी हम प्रोग्राम की शुरुआत में कहेंगे कि आप गाना मांग कर सकते हैं या किसी के ये मांगी हुई गाना आप सुनेंगे, तो हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं, ऐप कर सकते हैं, ऐप द्वारा भी आप तार कर सकते हैं अपना गाना मांग करने के लिए। एंड दैट हेलमाल खरातस, हाँ, सोसो में आप गाना मांग कर सकते हैं, हर एक के लिए है। वै डून हेलमाल नीट आन लेड, ये खासतौर पर हम खबर करना चाहेंगे। वह खेन लेड, लेड में काम हम लोग नहीं करते हैं। इधर इन मख बैल एन नुमर आफराख, दस खबर आपको किया जा रहा है आने वाले प्रोग्राम में। जबकि गाना आप मांग कर सकेंगे तो ज़रूर अपना फेवरेट भरी गाना, अपना मनचाहत गीत आप ज़रूर मांग कीजिए। यहाँ से हम आपको ले चलेंगे खबरें की ओर। खबरें प्रोग्राम में पेश होगा और खबर ये रहा कि उदित नारायण का कॉन्सर्ट, उदित नारायण और उनका बेटा आदित्य नारायण का कॉन्सर्ट आने वाले हैं, और वो भी तकरीबन या कहिए एक महीना के बाद। आज 15 तारीख अक्टूबर है और ठीक एक महीना के बाद 15 नवंबर रोटरडम अहोई में बस पेश होने वाले हैं उदित नारायण और आदित्य नारायण का लाइव कॉन्सर्ट। बहुत से लोग अपना टिकट खरीद चुके हैं। iStripTickets.com वेबसाइट पर आप जाकर खरीदिए और उसी वेबसाइट पर आप देखेंगे कि कितने लोग जाकर ये कॉन्सर्ट को देखेंगे, कितनी टिकट बिक चुका है आप देखेंगे उसी वेबसाइट के जरिए। तो जल्द से जल्द अपना टिकट आप खरीदिए, जब ही आप भी इस कॉन्सर्ट को देखना चाहेंगे, ज़रूर देखना चाहेंगे। एक धमाका कॉन्सर्ट होगा उदित नारायण और आदित्य नारायण का रोटरडम अहोई में। तो अपना टिकट जो है जल्द से जल्द आप जाकर खरीदिए iStripTickets.com वेबसाइट पर। 15 तारीख नवंबर रविवार का दिन होगा, उदित नारायण और खासतौर पर आदित्य नारायण का कॉन्सर्ट पेश होने वाले हैं, और ला रहा है ये काफ़ी धमाका कॉन्सर्ट रागा इवेंट्स का वेबसाइट पर सभी इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.

सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल, टेलीफोन, टैबलेट, आईपैड, कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। उसी वेबसाइट पर मौसमी समाचार और आपका दख हॉरोस्कोप होता है। जावेद अली प्रोग्राम में

खुदा में पेश की गए आप सभी सुन वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अरमान मलिक की ओर हम आपको ले चलते हैं। अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है आज की प्रोग्राम में।

दिल जो ना कह सका फिल्म का नाम, गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए रेडियो SBS की जरिए। चले गाना अतीफ असलम की आवाज में पेश किया जा रहा है।

के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और

ना मुझको छेड़ो, ऐसे ना मुझको देखो, जो देखना ही कुछ तुमको है तो फिर मेरे दिल को देखो। हम प्यार के हैं राही, दिल प्यार की है मंजिल, किस काम की ये महफिल, दिल से न मिला जो दिल होगा मिलना हमारा मुश्किल होगा, मिलना हमारा मुश्किल होगा मिलना।

रेडियो SBS के जरिए कुमार सानू औरल का जेके आवास में ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में मोहित चौहान की ओर, मोहित चौहान की आवाज में ये गाना।

चौहान की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर, उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई है, चलिए प्रोग्राम में अब की बार हम

आवाज में खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11।

ही रहना। आज भी ये बहुत सी सुनने वालों बस रेडियो SBS का प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। कुमार सानू जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो मीठे के गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है। और अब की बार प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं साउथ खान और प्रभा भारती की आवाज में ये गाना।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म परवाना फिल्म का गीत पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार उदित नारायण और अलका जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। उदित नारायण और अलका की आवाज में खास गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम है

की प्रभा में पेश की गई पहले मोहब्बत फिल्म का नाम पहले मोहब्बत, उसी फिल्म से ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है शेडू ट्रैक से हॉलैंड देश से। ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है और वो भी सालों से। राहत फतेह अली खान एंड हर्षदीप की आवाज में फटा पोस्टर निकला हीरो फिल्म का नाम।

कालका जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना भी आपने सुना। चले प्रोग्राम में अनुराधा पोटवाल की ओर हम आपको ले चलते हैं। अब की बार गाना जो पेश किया जा रहा है फिल्म का नाम आंखों में तुम हो।

अनुराधा पोटवल के आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए। सोनू निगम और अनुराधा पोटवल की आवाज में आपको पहले भी कहीं देखा है, फिल्म का नाम और उसी फिल्म से ये गाना।

कोटवल की आवाज में गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में फिल्म का नाम आपको पहले भी कहीं देखा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपका खिदमतगुजार अबीन। चले प्रोग्राम में अबकी बार अभिजीत एंड

रेडियो SBS के जरिए ये जानवर प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आज क्यों हमसे पर्दा है रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चले द हार्ट ऑफ द बिलियंस द माइटी मुकेश की ओर।

हार्ट ऑफ मिलियंस द माइटी मुकीस के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चलिए एक और खूबसूरत गाना मुकीस जी के आवास में आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में ये खास गाना बस पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को खबर किया जा रहा है कि स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-2-62-66-11 और हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 03-2-65-65-60। इसी तार की नंबर पर अपना सभी और सभी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं।

द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकीस की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है ये गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है। किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में चले मिलकर ये गाना को सुनते हैं।

किशोर कुमार एन लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। उसी सुनने वालों है जो पुरानी नगमे इस वक्त सुनते हैं जो रेडियो SBS के जरिए पेश किया जा रहा है। चले गाना और किशोर कुमार की आवाज में।

किशोर कुमार के आवास में ये खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। चलिए हम आपकी बार ले चलते हैं फिल्म बारादरी की ओर। उसी फिल्म का एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम है बारादरी। फिल्म का नाम खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। तो चले प्रोग्राम में ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है मोहम्मद रफी और लता जी के आवाज़ में।

मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर। अब की बार जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है

रेडियो SBS के जरिए ये खास पुरानी फिल्म का गीत आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई है रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना। चले अब की बार ये गाना की ओर। ये गाना भी काफी पुरानी है जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। मुकेश और गीत

रेडियो बेस पे स्टेशन के ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा पे। चले मन्ना डे और लता जी के आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। काफी पुरानी फिल्म का गीत अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम है ऊंच

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन वालों, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आरजे अंशलि क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो allemaal, dit is uw आरजे अंशलि क्रमलाल, die u van harte welkom heet in het programma गीतों के लहर। Wilt u reageren, kan het altijd, surf maar naar de website www.radiosbs.nl of bel naar de studio met 030-262-6611. Voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Dan gaan we naar het eerste liedje van vandaag en dat is...

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में, मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

फिल्म अमर प्रेम से आपने सुना आर डी बर्मन और लता मंगेशकर की आवाज़ में। रहना बीत जाए शाम न आए। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, पलक मुच्छल की आवाज़ में। रजदान है गाने के बोल और फिल्म का नाम है बदनाम।

मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। आपने सुना हाफ गर्लफ्रेंड से, ये एक फिल्म है अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर का। तो अब हम चलते हैं अगले गाने की ओर। रेडियो SBS FM के जरिए से आप सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म वो कौन थी से, लग जा गले कि फिर से ये रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो।

तलत अजीज की आवाज में आपने सुना डैडी से सपनों के घर के। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, जुबेन नौटियाल की आवाज में, फिल्म सनक से आप सुनिए, सुना है तेरे दिल पे मेरे, लिखा है कहीं नाम है मेरा।

0: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
1: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के। इस आयुध फिल्म पर रिंदा खसंगदोर आशा भोसले एंड सुरेश वाटकर खसंगदोर हेमंत कुमार कॉम दान आयुध फिल्म खामोशी फिया रेडियो SBS तुम पुकार लो।

दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, आपने सुना फिल्म रोजा से। और अगला गाना है जय जय शिव शंकर फिल्म वॉर से। ये एक फिल्म है ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ का।

तू है अब जो बाहों में करार है, रब का शुक्राना आपने सुना जन्नत दो से। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है जिन्नी वेद सनी से, मिक्का सिंह, नेहा कक्कर और बादशाह की आवाज में। अब सुनिए सावन।

बहुत खूबसूरत हैं आंखें तुम्हारी, बना दीजिए इनको किस्मत हमारी। ये बहुत ही खूबसूरत अल्फाज आपने सुना जगजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म वत से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों की लहर में है, चाइना टाउन से। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज़ है हमारा दिलरुबा।

पैसा ये पैसा आपने सुना टोटल धमाल से, और अगला गाना प्रोग्राम गीतों की लहर में है जाने तू या जाने ना से। राशिद अली की आवाज में आप सुनिए कभी कभी अदिति, जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है।

इस पल मैं हूँ या तुम हो, गज़ों दूर सोनू निगम है श्रेया घोषाल, बस और द फिल्म आजा नचले। And now the film An Evening in Paris comes with Sangha Dosharda. Lecha, lecha, lecha, mera dil.

कैसा है चिनाब का, इस गजंगा दौर किशोर कुमार। En uit de film Chalti Karam Gaadi komt gezongen door Kishore Kumar weer. Ik lerki bhigi bhagi si.

हमारी अधूरी कहानी फिल्म से आपने सुना ये बेहतरीन गाना, हमारी अधूरी कहानी अरिजीत सिंह की आवाज में। और अब आप सुनिए सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में बाबुल से, कह रहा है दिल दीवाना।

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।